0: मैं हां कौन? तुहानू सर्वशक्तिमान गुरु दा हुक्म मनना चाहिदा है।
1: अच्छा, हुण तुहानू समझ आ गई है, जो है सो है। महाराज दा कहना मनना साडे दोहां दे हित विच है। हुण सबर रखो ते 6 महीने आराम करो, अपना चित गुरां दे चरणां विच लाओ।
0: बेशक मैं गुरु जी दा सिमरन करांगा।
2: इस दौरान कुदरत आप ही उस दे परिवार की देखभाल करन दी प्रक्रिया विच सी। उस रात उन्हां नूं खान लई कुछ नहीं मिलिया अते उन्हां दे गवांडियां ने पुछिया,
3: तुसी अज रात दा खाना क्यों नहीं बनाया?
2: अते पत्नी ने जवाब दिता,
4: जेड़ा साडे लई कमांदा सी ओ तां चला गया, सानू नहीं पता कि उसनू की होया। हुण तां रब ही उसदी हालत जानदा है। साडा खाना जा भुखे रहना हुण तां रब दे हत्थ विच है। जे देण वाला देवे तां असी पकावांगे अते खावांगे, नहीं तां असी भी की कर सकते हां।
2: गुआंढियां ने सोचिया कि ए ठीक नहीं सी कि उन्हां कोल भोजन नहीं सी।
3: तुसी ज्यादा देर भुखे नहीं रहोगे, असी तुहाडी मदद करांगे, असी कुछ प्रबंध करदे हां।
2: अते शुरुआत लई हर परिवार उन्हां लई आटे दा एक थैला लियाया। गुआंढ विच 50 घर सन, इसलिए 50 बोरियां आटा इकट्ठा हो गया। इस तो लंबे समय वास्ते रोटियां बनाउन लई काफी आटा जमा हो गया। फिर इलाके दे लोकां ने उन्हां नूं नौकरियां दित्तियां। दोवें पुत्तर माहर कारीगरां दे सहायक बन गए। ओह अपना पैसा कमान लग पे। एक औरत ने धी अते उसदी मां नूं सिलाई कढ़ाई दे पाठ देने शुरू कर दिते। जदों ओह सिख गए ओह भी कमाई करन लग गए। हुण भोजन की कोई समस्या नहीं सी, ओह रोजी रोटी कमान लग पे। इस तरह पूरे 6 महीने बीत गए। वापस कोठी थे, गुरसिख ने कहा,
1: समा खत्म हो गया है, तुसी हुण जा सकदे हो, गुरु दा हाथ सदा तुहाडे सिर ते बणिया रहे।
0: मैं आजाद हाँ, मैं जा सकदा हाँ, मैं हुण अपने परिवार नूं देखना चाहुंदा हाँ।
2: ओ तुरंत उन्हां नूं देखण लई दौड़िया। ओ बहुत चिंतित सी कि किते ओ जिंदा भी हन या नहीं। जदों उसने उन्हां नूं देखिया तां उसदा दिल बाग बाग हो गया।
0: मेरे प्यारे तुसी ठीक हो? मैं तुहाडे बारे बहुत चिंतित सी, रब दा धन्नवाद तुसी ठीक हो।
2: ओ सिर्फ जिंदा ही नहीं सन, सेहतमंद भी सन। असल विच ओ पहला नालों भी ज्यादा तंदुरुस्त लगदे सन। उसदी पत्नी ने कहा,
4: जदों तुसी गवाच गए सी सारे गवांडियां ने सानू भोजन प्रदान करन लई योगदान पाया, फिर उन्हां ने सानू सिखलाई दित्ती ता जो असी कम कर सकिए। साडे सारियां दी कमाई नाल हुण असी बहुत सफल हां। साडे कोल पहलां नालो किते वध है। तुहाडे लई चिंता करन वाली कोई गल नहीं सी।
2: पत्नी दी एह गल सुन के ओह बहुत खुश होया। उसनूं गुरु जी दी खेड समझ आ गई। उसने समझ लिया कि गुरु जी ने सारा प्रबंध इसलिए कीता सी तां जो उसनूं विश्वास होवे। उसनूं हुण विश्वास होया कि रब ही उसनूं प्रदान करदा है। ओह गुरु जी दी खुशी अते शुक्रगुजारी नाल दुबारा मिलन गया।
0: हे सच्चे पातशाह, तुसी मैनूं नरक विच्चों कढ के मेरियां अखां सामने असलियत लिया दित्ती है। मैं अपनी सारी उम्र अपने परिवार लई भोजन की चिंता विच गुजार दित्ती हुंदी, इस दी बजाए तुसी मेरी जिंदगी नूं बर्बाद होण तों बचा लिया है। ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ

0: जो बहुत वड्डे रुख उगे देख के बड़ा हैरान होया।
1: है एकी ए रुख कितों आ गए?
2: हे वाहे गुरु की ए वही बीज ने जो असी बीजे सन।
0: ए चमत्कार सी रातो रात रुख किमे उग सकदे हन?
1: ए नहीं हो सकता, असी कल ही ताजे बीज बीजे सन।
2: वाह ए तो गुरु जी दा आशीर्वाद है।
0: ए खबर अग दी तरह हर पासे फैल गई अते जल्द ही सिमरन दे कारनू टीवी दे पत्रकारा ने चारे पासों घेर लिया। सिमरन टीवी ते सी अते रिपोर्टरा नाल गल करके पूरी दुनिया नू इस बेहतरीन कहानी बारे दस रही सी।
3: सिमरन जी तुसी ए दसो कि तुसी उना लोका नू की कहना चाहोगे जो इस गल ते शक करदे हन कि ए रुख रातो रात नहीं उगे?
2: इस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कि तुसी मेरे ते विश्वास करदे हो जां नहीं। एक बार जदों असी सच देख लवांगे ते सारियां समस्यावां अपने आप हल हो जाणगियां। इस विच असी सारे इकट्ठे हां, सारे लोग, जानवर अते पौधे, धरती दा हरेक जीव अते इकट्ठे मिलके असी एक सुनहरा भविख सिर जांगे। सानू भाई कन्हैया जी नू अपना आदर्श वजो देखना चाहिदा है।
0: तां दुनिया दे हरेक कोने विच लोकां ने खुद इस नू अजमाया। उन्हां ने भाई कन्हैया जी नू याद कीता अते वख-वख थावां ते बीज बीजने शुरू कीते, पर ए चमत्कार आउण वाले हालातां दा इक छोटा जिहा हिस्सा ही सी। सिमरन वल्लों शुरुआत विच बीजे गए रुखां दे खास बीज मिट्टी अते पानी राही होर रुखां नाल जुड़ गए। उन्हां दीआं जड़ां इक दूजे तक पुज गईआं अते जल्द ही दुनिया भर विच संघणे जंगल उगणे शुरू हो गए।
4: As by Ganeya sees Ekonkar, so do I see the one and all. ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
5: ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸਮਝਣ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ।
6: ਜੰਗ ਰੂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਖੰਡਾ ਇਕੋਂਕਾਰ ਯੰਗ ਵੇ ਖੰਡਾ ਰਿਪਨ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
7: ਕਮੋ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਬਿਆ ਏਕੋਂਕਾਰ ਜੋ ਤੰਬੀਨ ਬਿਓ ਅਲ ਉਨੋ ਇਨ ਤੋਦੋਸ ਦਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
8: ਕਮ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਪੁਆਤ ਇਕੋਂਕਾਰ ਜੇ ਬੋ ਉਸੀ ਲੋਨ ਇਨ ਤੂ ਦਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
0: दुनिया भर विच लोकां वल्लों कीते जा रहे सिमरन दी संयुक्त शक्ति दे नाल एह खास बीज जल्द ही उग गए अते बंजर जमीना भी खूबसूरत संघणे जंगलां विच तब्दील हो गईआं। एक महीने दे समय अंदर सिमरन बाहर गई अते उस ने एक बेहतरीन नजारा देखिया। उस ने अपने उपर आकाश विच दर्जना ही काले बदल वेखे। उस दे चेहरे ते एक बहुत वड्डी मुस्कुराहट सी अते उस दियां पूरियां अखां खुशी नाल चमक रहियां सन।
2: रुख मीनू लेके आ रहे हन, ए काम कर रहा है।
0: कुछ मिंटां बाद सिमरन खुशी नाल मीं विच नचण लग पई। पानी दियां बूंदां विच उछलदी होई अते गोल गोल घूमदी होई
2: ए काम कर रहा है।
0: जिवें जिवें दिन बीतदे गए दुनिया विच होर रुख उगदे रहे अते सारे पासे सब कुछ फिर हरा भरा हो गया। लोग खुश अते आनंददायक हो गए अते इस सब लई उस एक रब वाहिगुरु जी दा बहुत धन्नवाद है।
9: ऐ ता बहुत ही सिख्या प्रद कहानी सी। अजिही होर कहानियां वास्ते सिखनेट दा ऐप डाउनलोड करो।